0: 費やばそうってね、どうせとっとこんなとこでね、とおったけんよ。感じでね、とけて。で、ご気圧に足りんで、気なあててれ。気なあててれ。え、せわかち。いわちにふりなけどので、にごれはて。あの、気なあさててれ、うおんざて。せかち。え、せかち。やてれしなほうで。そっちにへよち。ये तो ताने है वाला और ची कुछ ने तो ना नहीं को ऐसे मासी और ची से ना से कुछ यानी कुछ टियों थे बेचे कुछ टियों थे बेचे कुछ टियों थे निवे सिनी पे आने सों थे और ची तो ताने है सेवा करने मासी
1: Il telenkoits William Sui hei ia huia on.